नौ कर थापी थापण हार है दसमें बस अलखो पार है शहर शब्द भरे जल निर्मल गुरमुख मैल ना लाएंदा राव सच दीपक जोत सवाई नापी कर वेखै वड़ियाई ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ

कथना कथि ना आवै तोटा काथ कथ कथि कोटि गुड कोट देंदा दे लंदे तक पाहे जगा जगंतर खाई काहे हुक्मी।

असंग जाप संग भाव संग पूजा संत बताओ संग ग्रंथ मुख वेद पाठ संग जो मन रे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार संग सती।

समति सर्वे प्रभंगी प्रमाते समति विबुदे कलंकं बिना नेकलंकी सर्वे नमो राधेश्वरं परम रूपे नमो जो जुगेश्वरं परम सिद्धे नमो राधेश्वरं परम हृदे नमो क्षेत्रपाणि नमो

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहे वाह। श्री भगवती जी के पातशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गौर नानक लिहाए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए साहे। अर्जुन हा गोविंदो सुनो श्री राय। श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दावे थाए सब थाई हो साए। दसवें पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सब थाई हो साए। दसवें पातशाह जोत तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के

प्रभ को सिमरहन से तनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन प्रवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बे मोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी

मैं कर राती। वर्त नेम करे बो पाती नहीं तुल, राम नाम विचार नान गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे। महा उदास पी सरथी वै अगन महा होतम परान, कनक असव है वर भूम दान, नौली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संजम अत सा।

काचि पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच। बहुत सियाणप जमका पोब्या पे अनेक जतन कर तृष्णाना त्रापै। पेक अनेक अगन नहीं बुझै, कोट अपाव दरगै नहीं सिजै।

माने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उसत तुम ते होए नानक वरना जानस कोए सर्ब धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जपत हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हरिया सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जसुन रसन बखानी सगल था।

कबहू ना बेसारी। जय प्रसाद बाग मिलख तना राखपुरे प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई। उठत बैठत सत सह त्याई उठत बैठत सत सह त्याई सत्याए जो एक लख हां नानक तेरी रखे जय प्रसाद करहै पुन बहुदान। मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभ को सास सास चेतारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर हो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुनै करन नाद जय प्रसाद पेखै बिस्माद जय प्रसाद बोलहै अमृत रसना। जय प्रसाद सुख सहज बसना जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परम गत पाव है।

विकास। प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्व निधान प्रभु तेरी माया, आप कुछ ना किन्हू लिया, जित जित लाभ तत।

साथ के संग सुने हर नाम। साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मन ते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे, साध के संग लगे प्रभु मीठा

अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्स पात्रा रूपना पेखे नेत्र साध की टहल संत संग हेत करण ना सुने काहू की निंदा सत्य जाने आपस को मंदा गुरप्रसाद बिख्या पर हरे मन की बासना मन ते टरे इंद्री जित पंच दुख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अप्रस बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिशन की माया ते हुए पिन कर्म करत हुए ने कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म आऊं बल की सा नहीं बास है केवल भगत कीर्तन संग राते।

वैष्णव परमगत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग। मन ते बिनसे सगला परम कर पूजे, सगल पार ब्रह्म साध संग। पापा मल खोवे तिस भगवती की मति।

क्या हुआ वे ज्योतिष पावे सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब किस ले ज्योतिष पावे सोई करे अनजानत बिख्या मैं रचे जे जानत अपने आप बचे पर मैं भूला दे दिसतावे निमख मह चार कुंट फिरया वे कर कृपा दिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जा का दृष्ट कछु ना आवै तिस तत्काल दैन दिस प्रगटावै जा को अपनी करे बखसीस ता का लेखा नंग ने जगदीश जियो पिंड सब तिस की रास कट कट पूरन ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जी वै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो ज्योतिष भावै सोई फुन थियो कबू ऊंच नीच मैं बसै कबू सो घर खरंग हसै कबू निंद चिंद ब्योहार कबू ऊबा काश प्याल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबू

बड़ राजा, कबू भिखारी नीच का साजा, कबू अपकीरत में आवे, कबू भला भला कहावे, जो प्रभ राखे तिव ही रहे। गुरप्रसाद नानक सच कहे, कबू होए पंडित करे बख्यान, कबू मोन धारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ इशनान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस पतंग हुए जिया, अनक जोन पर मैं भर।

गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभमान सो नरक पाती होवत सुवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टां का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे बहु जून परमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे तरमंता हुई कारगर बावे तृण समान किस संग ना जावे बहुलस्कर मान को

इसके हाथ कहां विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा हुए, आपे आप प्रभ सोए। जो किस कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं के संग। बूझे देखे करे बबेक, आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन से आवे न जाए, नानक सदी रहा समाए। आप उपदेशे समझे आप, आपे दतिया सबके साथ। आप कीनो अपन विस्थार, सब किस उसका उकरने हार। उसते पिन कहो किस होए, थान थरंतर एक सोए।

संत का दुखी सदा अपवित्र, संत का दुखी किसी का नहीं मित, संत के दुखी को दान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख ना सुख तै टरे, संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत भावे ता लय मलाए, संत का दुखी आज बीच ते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे।

नानक दुख भरम भौ जाए। अष्टपदी मानु की टेक बिरथी सबदान, देवन को एक कै भगवान। जिसके दिए रे अगाए, बौनत स्ना लागे आए। मारे राखे एको आप, मानुक के किसना ही हाथ। तिसका हुकुम बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कर।

कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहिला कर ले जियो नैनो पेक ठाकुर का रंग साध संग बिन से सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सरुण हर कथा हर दर गय नानक उजल मथा वडभागी ते जन जग माए सदा सदा हर कै गुण गाए राम नाम जो करे विचार से तनवंत

एको एक एक पसाना एतुत की ओ सोजी जाना नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुरप्रसाद अपने आप सूजे तिसकी जानो तृष्णा बूझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत आनंद।

तिस बलहार अष्टपदी टूटी गंडन हार गोपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माए तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अबनासी प्रभ आपे आप आपन किया कछु ना होए देसो प्राणी लोचे कोए तिस बिन नाई तेरे किस काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नहीं मोए प्रभ की जोत सगल घट सोए तरवंता होए क्या को गर्भ जा सब किस तिसका दिया दरब है अत सूरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कहता वै जे को होए बे दतार तिस देन हार जाने गावार जिस गुर प्रसाद टुटे हो रोग नानक सूजन सदा अरोग ज्यो मंदिर को थमे थमन त्यों गुर का शब्द मन है अस्थमन ज्यो पखान नाव चढ़ तरे प्राणी गुर चरण लगत निस तरे ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन हुए विगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग

राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान लिहु मन मूल, राम नाम हिरदय में तूल, लाद खेप संतै।

0: अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मैं राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिस ते परे नाहीं किस कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बीना आपे दाना गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन एहो अनराओ मनसा पूरन सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन फरन जाका नेत्र फूर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सद जाकै सर्व थोक सुनिए कर ताकै राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याए त्याए भगतै सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जां की लीला कीमत नाहे सगल देव हारे अवगाए पिता का जन्म कै जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जनदास नाम त्यावे से तै गुण मैं जाको फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके अस्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना जाते रंग नाना भेख कर एक रंग नाना भेद किनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक ओंकार नाना चलत करे किन माए पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना भेद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाव नाम के

जब अवगत गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किश पूछत लेका जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छूटे कौन बंधन बाधे।

समाए। हिस्ते हो सोना ही बुरा उरे कहो किने कश करा आप भला करतूत अतनी की आपे जाने अपने जी की। आप साच धारी सब साच ओत पोत आपन संग राच दाकी गत मित कही ना जाए दूसर होए ता सो जी पाए।

सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम न सहै। प्रभ कै सिमरन काल प्रहरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ कै सिमरन साध कै संग सर्ब निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सफल फला। से सिमरे जिने आप सिमराए, नानक तां कै लागो पाए। प्रभ कै सिमरन सब ते उच्चा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किश सुझै। प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूरन आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए,

माचूरे प्रभु का सिमरन हर गुण बानी प्रभु का सिमरन सहस मानी प्रभु का सिमरन कबहू न चूरे प्रभु का सिमरन हर गुण बानी प्रभु का सिमरन सहस मानी प्रभु का सिमरन निश्चल आसन प्रभु का सिमरन कमल विगासन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन कांत न पार सिमरे से जन जिन कौ प्रभ मया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कार भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नी चौकुंट जाते

संत का संग बड़ भागी पाईए, संत की सेवा नाम त्याई, नाम तोल का शवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सरब टडोल, पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमूल अष्टपदी, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत बखियान, योग अभ्यास करम तरम क्रिया सगल त्याग, बन मध्य फिरे अनक प्रकार किए, वो जतना पुन दान होमे बुरतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करै बहुपाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास तपी सरथी वे अगन माहे, होमत परान कनक सब है वर भूम दान, न्योली कर्म करै बो आसन, जैन मार्ग संजम अत साधन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तौ पी होमे मैल न जावे, हर के नाम समसर कश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर्थ दे छुटै, गर्भ गुबान मन ते हुटै, सोच करै दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साधना करै,

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कमन मूल ते कमन दृष्टानी जिन तू साज सवार शिगारिया गर्भगन मैं जिनहि उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जो बन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साक सह

ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परिवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास।

परस वैष्णो सो जिसी उपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत हुवै निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की शा नहीं बाछै केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब उपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरै नाम जपावै नानको वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग

कई कोट पार ब्रह्म के दातिन हो वत्या तुम परगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारी कुनेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पय सत सद ही जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख से समावे।

कबहू महाक्रोध बिकराल, कबहू सर्ब की हो तरवाल, कबहू होए बह बट जाजा, कबहू पिखारी नीच का साजा, कबहू अपकीरत मैं आवे, कबहू भला भला कहावे।

कबहू होए पंडित करें बखियान, कबहू मोन तारी लावे ध्यान, कबहू तट तीरथ स्नान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग हुए जियान, कजोन भरमे परमिया, नाना रूप ज्यो सुहागी दिखावे, ज्यो प्रभावे तिवें नचावै, ज्योति सुभावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबहू

संत के दोखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे तां लए उबार। संत का दोखियों बिल लाए, ज्यों जल बिहुण मछली तड़फड़ाए।

तिसका हुकम भू सुख होए, तिसका नाम रा कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागै कोई। उस्तत मन मैं कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार।

कर कौ सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम करंग सेवक कौ प्रभ पालन हारा सेवकी राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया

निर्मल मंत्र, एक आस रख मन माहि सर्व रोग नानक मिट जाहि। जिस धन कौ चार कुंटे उठता वह सो धन हर सेवा ते पावह, जिस सुख कौ नित बाछै मीत सो सुख साधु संग प्रीत। जिस सोभा कौ करहै भली करनी सा सोभा भज हर की सरनी, अन को पावी रोग ना जाए रोग मिटै हर अवखद लाए सर्वधान मैं हर नाम निधान।

पूर्ण पुरख नहीं डोला ने सुपर भरे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध कै संग परे सरनयान सब त्याग अंतर प्रगास सन दिन लिवलाग बट भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा नयाल बंधन काट मुक्त जन बहया जन मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी श्रद्धा सब पूरी रव रया सत्संग हजूरी जिसका साथ तन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे

जाप अष्टपदी। जब अकाव रिव कशना दृष्टि तब पाप पुन तब कहते होता, जब धारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के सुसंग कमाद। जब इसका वर्ण चिन्ह जाप तब हर सो कह के सहबे आप, जब अपने आप आपो पार ब्रह्म तब मोकाक सोत परम। अपन खेल आप भरतीजा नान करने हार न दूजा, जब हो प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी। जब एक कह हरगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुपाहे तब शिव सब

अविनाशी सुख अपने आसन तह जन मन कौ कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रसोए तब जम की त्रास कौ किसोए जब अवगत अगोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ

मिले साध संग मिल करो आनंद। गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देखा करो उदार, अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का है सुहाव। आठ पैर प्रापे खो नेरा मिटाया ज्ञान, बिन सह अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो।